0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700-403-439-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

0: उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी अंदर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो अमृत वेले प्रकाशमान होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो पावन मुख वाक समुची कायनात समुचे जगत दे भले वास्ते बख्शिया, उस श्री मुख वाक दी विचार सरवण करन वास्ते आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा च विराजमान हो। आओ सतगुर मेहर करन, सिर ते मेहर भरिया हथ रखन, अज दे अमृत बचना दी विचार गुरु साहिब जी आप करवा लैन। शब्द दे विच जो रहाओ दीआं पंक्तियां ने ओ शब्द दा केंद्री भाव होया करदीआं ने। रहाओ दा अर्थ भी ए आ भी इत्थे रुको, इन्हां दी विचार करो। अज दे शब्द विच जो रहाओ दीआं पंक्तियां ने, फरीद साहिब जी कहिंदे ने, तैं साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछा पछतानी। दो नुकतियां ते विचार गुरु साहिब दी कृपा ना करिए। तैं साहिब की मैं सार ना जानी, हे वाहिगुरु जी, हे मेरे मालिक, जदों मेरे कोल जिंदगी दा समां सी उदों ते मैं तेरे बचना दी कदर ही नहीं पाई, तेरे वल ध्यान ही नहीं दिता भी तुसी मेरे भले वास्ते की कह रहे हो। सारी जिंदगी मौज मस्तियां च नंघाई, सारी जिंदगी मन दियां मौजां करन वास्ते नंघा दित्ती, ते फिर की होया, जोबन खोए पाछा पछतानी। एक अलंकार खिंचया है, समां किसे दे हथों लंघ जावे ते मुड़ के पछतावा ही रह जांदा, ते जदों पछतावा होवे उदों बंदे कोल करन वास्ते कुछ भी नहीं हुंदा, उदों ते झुरदा है, उदों ते परेशान हुंदा। एक अलंकार महाराज जी खिंचया, असी सारियां जीव इस्त्रियां वां ते असी अपने मालक प्रभु परमेसर दे पति दी सेवा विच लगना है, ते जदों कोई जीव इस्त्री अपना जवानी दा समां नंघा लवे ते अपने मालक वल ध्यान ना करे, बाहर फिरे, ते जदों बाहर किन्ना कु चिर फिरना, जिन्ना कु चिर शरीर ते जवानी है, जिन्ना चिर रूप रंग है, एक दिन समा आउंदा है सब कुछ ढल जांदा, ते जदों ढल जाए उदों घर नूं मुड़े ते फिर लंघे होए समें नाल मालक दरवाजा नहीं खोलदा, मुड़ के घर विच थां नहीं मिलदी। फरीद साहब जी ने ये बचन लिखे हुए ने गुरबाणी विच, फरीदा नड्डी शौ ना रावियो। नड्डी दा भाव जवान इस्त्री सानू समझा रहे ने कि तू जवानी वेले संगत विच नहीं आया, जवानी वेले अमृत वेले उठिया ही नहीं, ते फिर की होया, वड्डी थी मोई आस, ये जवानी सदा नहीं रहनी, मुड़के वड्डे हो गए, भाव के मुड़के बढ़ेपे विच चले गए। हर जिंदगी दे मनुख दे कोल चार पड़ा ने, पहला पड़ा है पहले पैरे रहण के बन जा रहा मित्रा हुक्म पया गर्भास, पहला इहदा पड़ा है माता दे गर्भ विच, ते उत्थे समा पूरा हो जांदा ते माता दे गर्भ विच असी टिके नहीं रहिंदे, साडा जन्म हो जांदा। दूजा पड़ा हो जांदा साडा बचपन दा, बचपन दा भी एक टाइम आ, वो टाइम लंघ जे ते असी जवानी विच चले जांदे आ, ते जवानी दा भी एक समा है, जवानी दा समा लंघ

रंग माण लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला दिन थोरड़े थके भया पराणा चोला। मारे कहिंदे ने आनंद लै अज इन्हां न्याणियां दे पिछे करके संगत विच नहीं ना हुंदा भी कम पिछे पै जाणा न्याणियां दे घाट पाऊगी इन्हां दे सुख ना किते घट जाण। इन्हां तैनूं बाहों फड़ के संगत विच नहीं लै के आउणा जे आखे भी इन्हां करके मैं पहलो इन्हां दे कम सवार लां। ना ना इन्हां दे भोगां दी भी उड़ीक ना रखी भी जदों मैं चढ़ाई कर गया ते पता नहीं किड्डा क वधिया मगरों मैनूं मुक्त करा देणगे। इत्थे किसे दे सिर ते गल नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आख्या आपण हथी आपणा आपे ही काज सवारिया। आपे बाणी पढ़ अपनी किरत विचों आपे गुरसिखां नूं प्रसाद छका ते आपे ही उठ के अमृत वेले जप सतनाम श्री वाहिगुरु जुड़ जाएगा ते सुखां दुखां दा अंत हो जाएगा। जे विछड़िया रहा ते पछतावा रह जाएगा। कीवें पछतावा फिर फरीद साहब जी दस रहे ने आओ आरंभ तो शब्द दी विचार

0: मैं मर गया मेरे नाल किसी ने नहीं जाना। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, जेड़े टब्बर पिछे लगे रहे मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। दुनिया विचो मेरा कोई बेली नहीं इथे,
1: कर कृपा प्रभ साध संग मेली।
0: जदों फिर तरस ए अरदास कीती ते उन्होंने कृपा कर ली, उस वेले तरस आ गया भी आ फिर जे तू अरदास करन आया ते अस संगत विच बह, संगत विच बैठ के तेरे औगण बख्शे जाणगे।
1: जा फिर देखा ता मेरा अल्लोह बेली।
0: संगत करदिआं भरम भुलेखे निकल गए। अगे मैं कहिंदा सां फलाणा मेरा रिश्तेदार दुख पऊगा ते फलाणा मेरा सज्जण मेरे आखे लगूगा, नहीं इत्थे भुलेखे कड्डे ने मारे। कहिंदे ने इक सज्जण सब सज्जण, जे ते गुरु तेरे वल वा ते तेरे भैन भरा रिश्तेदार तेरा साथ देणगे, जे गुरु दी तेरे ते मेर दी नजर नहीं ते सौ रिश्तेदार भी तेरे लागे बैठा होवे दुख पऊ ते सौ दा सौ ही मुंह परा नू कर लूगा। कोई किसे दी बाह नहीं फड़दा, गुरु जिन्हां दे वल होवे ओही अगे हुंदे ने। संगत विच आण के भुलेखा निकल गया, जां फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, मालिक ही मेरा बेली है असली।
1: वाट हमारी खरी उडीनी।
0: महाराज हुण दस रहे ने इस करके सारिआं नूं समझ लैणा चाहीदा, आ जिहड़ा जिंदगी दा सफर आ ना साडा, ए बहुत बिखड़ा पैंडा वा। ए कोई एवें इन्ना सस्ते च गल नहीं लै लैणी चाहीदी भी इत्थे खाण पीण मौजां मानण आए होए आ, ए बड़ा बिखड़ा पैंडा है जी।
1: खंडे ओ तिखी बहुत पैणी।
0: ए ते इस तरह वा जिदा खंडे दी तिखी धार होवे ओदे उत्ते तुरना होवे ते बड़ी भीड़ी गली जिदे विचों दी एक पैर भी ना रखिया जावे ओदे विचों दी नंगना है जी।
1: उस ऊपर है मार्ग मेरा।
0: ए मेरा मार्ग आ, की समझाया, इथे पल पल गलती करन दा डर है, इथे पल पल औगणा विच फसन दा डर वा। जेड़ा डर के रहेगा ओदी बांह गुरु साहब जी फड़नगे, ओ नहीं कदी डिगेगा। ते जिन्ना ने गुरु कोलों बांह छड़ा के तुरन दा जतन करनगे उन्हां नूं ठेडे लगणगे, पल पल गलतियां करनगे उन्हां कोलों अगे तुरिया नहीं जाएगा जी।
1: एक फरीदा पंथ समार सवेरा।
0: की करिए फिर, फरीद साहब जी जुगति दस के कहिंदे ने जे गुनाहां तों बचना ठोकरां तों बचना ते की करिए, अमृत वेला सच नाओ वढाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। उठ के अमृत वेले समय नूं संभाल, झालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध, काड़ा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद, जिन्ने तेरे दुख टेंशना परेशानियां पईआं होईआं ए विछोड़े करके आ। नाम द्वारा शब्द द्वारा गुरु ना जुड़ जा तेरे दुखां दा नाश हो जाएगा, सुख तेरी झोली विच पै जाणगे। ए अज दे शब्द दी विचार है जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जो लड़ीवार विचार चल रही है, मारू राग दे अंदर वार दी आरंभता है। आओ बारहवीं पौड़ी दे नाल तीन श्लोक ने, इन्हां दी विचार अगले रहिंदे समय

दर्शन दर्शन की इच्छा है। हे महाराज ते जे तुसी एक बारी बुला लो तुसी आ जाओ ते मेनू इना सुख मिलदा जिदा कि शाहूकार ने एक पद विच लखां रुपये वट लवे ओ लखां रुपया लैके अपने घर जावे ते उहदी अड्डी थले नहीं ना लगदी खुशी नाल। जे तू एक बारी आवाज मारे मेरे मालका ते इन्नी मेरे अंदर खुशी हुंदी है जिदा मैं लखां रुपये

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है। पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है। वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है। भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति दान धर्म सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। अब अनजान व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में उसने कंबल ओढ़ रखा है, कंबल दे दिया गया उसको, उसने कंबल ओढ़ लिया। सर्दी से निवारण के तरीके बताए हैं कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी फिर भी महसूस हो रही है तो जर्सी पहन लो, जर्सी से भी महसूस हो रही है तो फिर कंबल ओढ़ लो। तो पुण्यात्माओं, यदि फिर भी सर्दी महसूस हो रही है तो रात्रि के समय भाई रजाई भी जोड़नी पड़ेगी, रजाई भी डाल लो तभी जान बचेगी। और कोई ये कहे कि आपने कहा था मैंने स्वेटर भी पहन ली, आपने कहा मैंने जर्सी भी पहन ली, आपके कहे से मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही है, मैं तो मैं ही रखूंगा ये सब साधना, ये कंबल दर्शी सब फेंक दूंगा। तो ये बातें महामूर्ख कर सकता है या किसी ने नशा कर रखा हो? तो ऐसी सचीची है उस व्यक्ति की जो ये कहता है कि आप जी ने ये साधना बताई, मैं उसको भी कर रहा हूं, ये भी बताई उसको भी कर रहा हूं, और अभी भी मुझे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए वो कहता है जी फिर मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मेरा दिल करता है मैं साधना त्याग दूं। तो साधना त्याग देने से तो फिर क्या होगा, जैसे कोई कहे मैं तो दर्शी भी निकाल के फेंक दूंगा, कंबल भी फेंक दूंगा, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही, तो नमूनिया होगा मरेगा। फिर उसका ये कोई तरीका है उसको उतार के फेंक दूं? उसका तरीका है कि और एक कंबल और जोड़ बल के इसी तरीके से

अब जो साधन आपको प्राप्त है ये आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपकी जान बची रहेगी, धीरे धीरे सर्दी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो साधनाएं आपको दी जाती हैं और फिर भी आपको कोई महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो सही लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समझना कि आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है। जो साधन आपको मिल गए हैं ये आपके जीवन रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा। आप डरे हुए हो, आप बहुत आपदाओं से पीड़ित हो, बहुत बुरी तरह सताए हुए हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी, वो कर्म की जो दंड है वो अधिक महसूस होता रहेगा, लेकिन अब परमात्मा आपके भी और आपके परिवार के जीवन की रक्षा करेगा और ये बुरे संस्कार थोड़ा बहुत प्रभाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हानि नहीं होने देगा। अब जैसे एक कारण तो ये होता है, परमात्मा ये चाहते हैं कि यदि यू आज सुखी कर दिया, यदि आज ही आपको सभी सुख कर दें तो कल आप यहां नहीं आओगे, ठेकियां पकड़े पाओगे शराब वाले पे और वहां लाइन लाकर ना जाने कितनी दारू पी जाओगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे शिला पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे और बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आप यही प्रार्थना किया करो, हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आपसे दूर हो जाऊं, आग लगे से सुख के और बलिहारी उस दुख के जो आपकी याद दिलावे पल पल में। तो इतना कष्ट भी अनिवार्य ही होगा, वही परमात्मा आप पर बनाए रखेगा। आप यदि भगवान से दूर होगे तो फिर वो सारा ही कष्ट आ जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। इस प्रकार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझकर आप जिन्हें अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, यानी ये हॉस्पिटल जो है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला है, जब तक ये रोग आपका नहीं कटेगा आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के झूठे सुख को सुख कह, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अपनात्मा परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआ बनवा दिया, बढ़िया उसके कंस्ट्रक्शन करा दी और उसमें जल है नहीं, तो नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं। जो व्यक्ति आज से कितना बड़ा सेठ हो, कितना ही वो बड़ा पोस्ट प्राप्त हो, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा तो वो जल रहित कूप है। अपुण्यात्माओं क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भला, नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं इस भक्ति करने वाला, सत भक्ति करने वाला पूर्ण संत से उपदेश लेकर, वो इतना भी निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी टूटी हुई हो और वो सत भक्ति कर रहा है और एक सुंदर चिप्स के मार्बल ला रखे, कोठी बना रखी और तीन तीन चार चार मंजिल की, उसमें रहने वाला प्राणी सत भक्ति नहीं कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान और वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अपुनात्मा झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अब आप जी तो यहां मांगने आते हो, घना धन हो जाए, एक मोटरसाइकिल ले लूं या फिर एक कार बढ़िया ले लूं, एक कोठी बना लूं। परमात्मा कहते हैं तो पहले तो भक्ति कर कुछ।

0: क्योंकि आज जमाना टाइम ऐसा है, ये कार मोटरसाइकिल तो आम हो रही है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, ये भी समस्या तेरी हल कर दूंगा यदि तेरी नीच साबित देखूंगा। यदि तू भक्ति से वंचित नहीं होता दिखेगा तो ये भी सब समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कार मोटरसाइकिल भगवान देगा, आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ आओगे भगवान के दरबार में, अर्धोवान और बिठा के लाओगे पड़ोसियों ने, उनका उद्धार कराओगे, तो आपको कार देगा भगवान, अवश्य देगा। और आप मांगो कार फिर सहर से पट्टे कर लू कि तो धक्के खाने जाओ पहाड़ियां पे, फिर नहीं देगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको संसारिक सुविधाएं भी देगा, लेकिन उसका सदुपयोग करते दिखोगे तो आपको सब सुविधाएं देगा। आपकी नीत ये देखेगा, जैसे अब हम क्या देखते हैं, 10-10 वर्ष से तीनों नाम लिया है और परमात्मा ने आज उनकी वो मौज कर दी, पहले तो उनके संकट निवारण किए और अब उनकी नीत साबित देख कर परमात्मा ने कि अब ये मेरे से दूर नहीं जा सकते, आज उनकी ऐसी स्थिति कर दी, उन्होंने कार ली। और कार लेने से पहले उन सब के एक रस पूरे परिवार के मन में ये आया कि भगवान ने कार दी है तो हम अपने सत्संग में जाया करेंगे, और भी कोई मिल गया उसको भी फ्री ले जाया करेंगे, उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे आपको वो सुविधा भी देगा जो इस काल के सुख को तुम अपने संस्कार से प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा अपने कोटे से देगा। इस प्रकार आप जी ने इस परमात्मा के मार्ग को समझना, कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है और मान रहा मनमोद, बिना भक्ति करने वाले प्राणी चाहे यहां पर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है और आगे क्या दुर्गति होगी उसकी, कलेजा हिल जाएगा जरा सा भी ध्यान से कोई सुन लेगा उस कहानी को, परमात्मा के विधान को। लेकिन हमें परमात्मा का विधान पता नहीं, जिस कारण से हम ये डड़े ढोंड पर ही लगे रहते हैं। बहुत से प्रमाण है हमारे पास, जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 के करीब सदस्य थे और किसी का शोक व्यक्त करने जाते थे किसी दूसरे शहर में हवाई जहाज के द्वारा, सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोत। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं, हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो हुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुणात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीज बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। और क्या क्या आशाएं होती हैं, हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगे होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा, ऐसे उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी। और 1 सेकंड में मारे गए, 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल कर ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहां से जाएगा। जाना सभी को है लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते चाहे को प्रधानमंत्री मर जाए उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत जैसे अपराधी को ले जाते। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल की रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग, उनको फिर यम के दूत काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे। और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर, जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और 1 दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा, आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है, लोक लाज में आके उसने कोई गलती मर्यादा भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हैं वो नहीं आपको मिल रही। और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपके पुण्यों में आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब ये सोच बैठेगा वो कि मैं सब कुछ कोई मर्यादा भी नहीं रख रहा हूं, मैं फिर भी सुख है मुझे। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया, वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आओगी, और फिर एक कदम आवेगी वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खाने। तो इसलिए आप जी परमात्मा कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आए कर धर्म राज डर कैसा, जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का, और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई, उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा, उसके पास नहीं जा सकते आप, वहां नहीं ले जा सकता आपको कोई। और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहां एक फिर आपको याद आओगे सत्संग के वचन के, गुरु जी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहां कैसे आ गए हम। तो वहां भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लाएंगे। और जैसे आपको बताया ना, किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी फिर गफलत कर गया, और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने, जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है, इनसे हमने मुक्त होना, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर हो गए तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यू का न्यू बना रहेगा और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा प्रोसेस। अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे और परमात्मा कबीर जी की शरण माने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी दुर्गा इनके नाम भी और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो, तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से, उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहां नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में देवता बनकर बुदानी कहां कहां आपको घुमाएगा और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहां पहुंच गए शिव जी लोक में विष्णु जी के लोक में ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहां भक्ति नाश होगी क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहां खूब एक बार घंटी दबाते ही बेल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज की आवश्यकता है, आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाट करो लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं, और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहां से पकड़ के बाजू और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा, आप वहां स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए आपके पुण्य ही आप वहां खर्च करोगे, विष्णु जी देना चवन्नी आपको वहां पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा नहीं उसी से भगा देगा वहां से जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिव लोक में रहोगे, वहां समाप्त होती आपकी पूंजी तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छोटाऊ। तो देख कितने दयालु हैं कि मान ले मूर्ख तने गलती कर भी दी, भक्ति नहीं करा, कुछ वर्ष करके छोड़ भी दी, फिर तू वहां जाएगा विष्णु लोक में ब्रह्मा के लोक में क्योंकि प्रथम मंत्र की बहुत कमाई आपको करवाई जाती है, तो वहां भी तो मुझे याद कर लेगा, मेरे गुण नहीं भूलेगा कि मेरे से गलती होगी, परमात्मा मुझे बचाओ मेरी तब भक्ति नाश हो जाएगी। यहां पर कहते हैं शिव मंडल यानी शिव के लोक में, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊ। तो वहां जब याद करोगे वहां परमात्मा इस दास के रूप में पहुंचेगा आपकी और कहेगा उनको छोड़ दो ये हमारा बच्चा है, लेकिन आपने एक समय गोल्डन चांस खत्म कर दिया, फिर ना जाने कब मनुष्य जीवन होगा, उसको परमात्मा कहां ले जाएगा, अपने लोक में ले जाता है और फिर उसके आधार से परमात्मा आपके अपने हिसाब से आपको मनुष्य जीवन देता है। अब वो मनुष्य जीवन आपके प्रारंभ हो गए, उस मनुष्य जीवन में फिर संत मिलेंगे, इसी तरह प्रोसेस फिर होगा जो आज हो रहा आपका, और इस प्रोसेस में आप फिर फेल होगे, फिर धक्के खाए जाइए चाहे लाख जन्म हो जाए इस भक्ति से, इस मनुष्य के फिर क्या क्या सहारा मिला आपको, चाहे कितना ही फिर मान ले फिर मनुष्य जन्म तो देगा परमात्मा आपको, नहीं तो वहां तो आपको बर्बाद कर देते वो काल जितनी व्यवस्था थी ब्रह्मा विष्णु लोक के में, लेकिन उस पूंजी को बचाकर आपको मनुष्य जीवन दिला देता है और मनुष्य जीवन में ही आपका कल्याण संभव है। उसी के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दासों को भी अपनी पावर देकर भेज देते हैं ताकि इन नालायक का ना किसी तरह समझ में आ जाए और ये किसी ना किसी समय में निकल आओ यहां से, और तुम फिर रह गए तो परमात्मा फिर आएंगे आपके लिए, और फिर क्या पता आप सिरे चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो अब ये गोल्डन चांस है आपके लिए, इसलिए ज्ञान बार बार समझाया जाता है, इसमें चूकना नहीं है, अपना कल्याण करवाओ, मौका दिया भगवान ने। कहते हैं सतगुर सरना आए के फिर धर्मराज डर कैसा है। एक भक्त बताओ था नू बोला जी मेरी रात्रि के समय दो जने आए मुझे पकड़ ले गए, बूंदी बूंदी सकल इसी बुरी उनकी, और ले गए तो मैं उनसे कहूं भाई कहां ले जा रहे हो, के चल धर्मराज के दरबार में तुम्हें बुलाया है। जब धर्मराज के दरबार से हम थोड़ी सी दूर रह गए, मेरा याद आई कि धर्मराज के पास तो हम जा ही नहीं सकते, तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, तुम कैसे ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा मुझे, मैं उनके साथ झगड़ा करने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गया हम। तो उनमें से एक ने बोला भाई तू नो कर, पहला पूछा धर्मराज से पता करके आ कि ये कह रहा इतनी दृढ़ता से कि हमें नहीं ले जा सकते, तो जा। तो मैं वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर चला गया। तो उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है और वो कह मैं तो कबीर जी का भक्त हूं और मुझे तुम नहीं ला सकते, हमारे साथ झगड़ा कर दिया, अब उसका क्या इलाज करें। धर्मराज बोला भाई, उसने देखा उसका अकाउंट, ने बोला रहा मरवाओगे मेरे को भी, छोड़ दो इसको तुरंत। तो वो भाग्य आया दौड़ा दौड़ा आते, ने बोला रहा छोड़ दे इसको। धर्मराज ने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे मरवाओगे क्या, ये तो भाई परम शक्ति का हंस है, तुम कैसे ले आए मूर्खो इसको, अगजी आपका ही आदेश था। बोला भाई जल्दी छोड़ के आओ। तो कहते मैं वापिस आया तो मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर काम नहीं करे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है अधरंग, और पसीना आ रहा पूरे शरीर में, और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल सा हुआ, और फिर वह बात याद आई रतरा गज वो आत्मा तो मर गया था, और फिर वो दूना दृढ़ता आ गई कि सचमुच सच्ची बात है, परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने, ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
4: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
0: मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, हो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ग्याबन गऊ काट के डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। ग्याबन गऊ काट के डाली कैसी करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। गऊ बच्छा तत्काल जवाई फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो कराम आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खां पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब कह एक कहानी कोई जात ना पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चावे सो कर दे सतगुरु, जो चावे सो कर दे परमेश्वर, ਬਰਮ ਪੜੋ ਨਾ ਮਤ ਕੋਈ, ਸੇਵੂ ਦੜਪੈ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ, ਪਾਛੈ ਕਰੀ ਰਸੋਈ, ਜੋ ਚਾਵੈ ਸੋ ਕਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਰਮ ਪੜੋ ਮਤ ਕੋਈ, ਸੇਵੂ ਦੜਪੈ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ, ਪੀਛੇ ਕਰੀ ਰਸੋਈ, ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਚੁਰਾਸੀ ਖੋਈ, ਯਾ ਕਥਾ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁਆ ਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਬਚਾਇਆ, ਜਲਦੀ ਨੇ ਕਰੀ ਚੜਾਈ, ਜਗਨਨਾਥ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਬਚਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਰੀ ਚੜਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਕੇ ਤੇਜ ਕੇ ਆਗੇ ਫੀਕਾ ਪੜ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਜਗਨਨਾਥ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਬਚਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਰੀ ਚੜਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਕੇ ਤੇਜ ਕੇ ਆਗੇ ਫੀਕਾ ਪੜ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਵਿਪਰ ਰੂਪ ਧਰ ਦੇਈ ਦੁਹਾਈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਵਸਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁਆ ਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪੱਗ ਪੈ ਡਾਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਗਨਨਾਥ ਕੇ ਪਾਂਡੇ ਕੇ ਪੈਰ ਕੀ ਯਾ ਪੜਗੀ ਅਗਨ ਬੁਝਾਣੀ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਪੈ ਡਾਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਗਨਨਾਥ ਕੇ ਪਾਂਡੇ ਕੇ ਪੈਰ ਕੀ ਯਾ ਪੜਗੀ ਆਗ ਬੁਝਾਣੀ। ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉ ਕੀ ਤਿਉ ਹੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁਆ ਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਬਲਤੇ ਤੇਲ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮਡਾਲੇ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ, ਸੇਕ ਤਕੀ ਕੈ ਮੰਤਰ ਸੇ ਤੇਲ ਕੀ ਠੰਡੀ ਕਰੀ ਤਾਸੀਰ। ਉਬਲਤੇ ਤੇਲ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮਡਾਲੇ, ਵੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ, ਸੇਕ ਤਕੀ ਕਹਿ ਮੰਤਰ ਸੇ ਤੇਲ ਕੀ ਇਸਨੇ ਠੰਡੀ ਕਰੀ ਤਾਸੀਰ। ਉਂਗਲੀ ਡਾਲੀ ਨਾ ਸਹੀ ਪੀੜ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਮੂਰਛਾ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁਆ ਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਕੋ ਕਾਟਣ ਚਲਾ, ਉਹ ਸੇਖ ਤਕੀ ਜਲੀਲ, ਆਰ ਪਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਖਲੀਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਕੋ ਕਾਟਣ ਚਲੇ, ਉਹ ਸੇਖ ਤਕੀ ਜਲੀਲ, ਆਰ ਪਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਖਲੀਲ। ਭਾਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਈ ਢੀਲ, ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਾਸੀ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮਨੁਆ ਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸੇਖ ਤਕੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਵਨ ਕਰੀ ਬਦਮਾਸੀ, ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਅੱਗ ਡਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਂਧ ਜੂੜ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਸੇਖ ਤਕੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਯੇ ਬਾਵਨ ਕਰੀ ਬਦਮਾਸੀ, ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਅੱਗ ਡਾਲੇ, ਬਾਂਧ ਜੂੜ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਹਾਥੀ ਡਰਸੇ ਬਾਗ ਜਾਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਗੁਣ ਗਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮਨੁਆ ਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन ना था वा भेख जुड़ा अतिवार्या। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन नहीं था भेख जुड़ा अतिवार्या। बन आया के सो बन जारा, यो होता ही माती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पर लई परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणा अमृत से अरी होगी वा सुखी डारी। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पे लई परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणामृत से हरी हुई वा डारी। कबीर बट से वो जाता पुकारी, दुनिया देखन जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। रविदास कबीर जी आथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सी में बरके, मदराजो पीवे वाई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सी में बरके, मदराजो पीवे वाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। राम देवानंद जी ने दया करी, राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके ये किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या, राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देकर किया ज्ञान उजियाला। चरणों के माँ रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। अपुनात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान ना होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर। और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर वो रखा था, या किसी ने कैर बोल रखा है, किसी ने झाड़ बोल रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितने कोई बाबा मर गया उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप चार ईंट कहीं लगा करके उसके माथा टेकन लग गए, और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप लिप आप पोते आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कांख होई। ओई माता के व्रत पूजा करते हैं माई, एक आप बनाओगे औरत की शक्ल सी बना लेंगे। आजकल तो बड़ी बनाई चित्र ले आवे किते थे, पहले आप बनाया करते नो चित्र से बना के औरत की घाघरा पर आ देते और उसको हाथ लगा देते नो बूढ़े बूढ़े है, और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नो कहे, ए होई माता मन पोता जी है, मेरे घर में सुख रही है, क्योंकि आप दीप है, आप पोत है, उस स्थान को मड प्लस्टर से लिपया करती, और आप बनाई हुई व माता भी आप कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बनाई हुई बनोगे तो मेरी सुरक्षा करिए, उसको पोते मांगे नुके अकल कहां से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे, पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो तेरा गजब भैयो। नुके जंडी पूजे, पीपल पूजे, और तुलसी ने पूजे, और स्किन का आगे हाथ जोड़ के नोके हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए, और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तेरा गजब भैयो। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, अब जैसे कि आपको सत्संग सुनाया था उसने बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है ऊपर मुक्ति धाम में, सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष दो प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा छन आवे छन जावे बे, कि एक सेकंड में पृथ्वी पर एक सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी, तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, इसी अपनी महिमा के अनुसार अपने गुणों के आधार से जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर, और उस अच्छी आत्मा को उस नेक आत्मा को जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। महाराज जैसे अड़ंगा न वो क्या करेंगे वो आकर के जो सुन बिले और मानना नहीं, जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में, 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे, इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने परीक्षा की थी कि एक भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं, तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को, वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे उस अच्छी आत्मा को, और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय गरीबदास साहिब जी, किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का, 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, वहां गवाले बनकर गए हुए थे, वहां से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे, वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे, गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए, गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये जहां ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया, फिर सचखंड में लेकर गए, वहां परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया, अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो, आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने और आप उसको पढ़कर आप खेचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते ना कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक, वो क्या करते हैं लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका वेट रेट दे देता है उनको मजदूरी, तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं, जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं और जो कंकर पत्थर है वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहां, फिर कारीगर के पास, उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई है कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह और आप उसके चिपक कर आ रहे हो, अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे, कौन, मुल्ला और काजी और पंडित और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीब दास उस शरे में झगड़े आन पड़ंत, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा है, गरीब दास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी, मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं, ये फल ये तुम खा सकते हो। किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 180,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 180 को सौगंध जिन नहीं कर जलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए, इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़कर देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे सिख और बड्डे बकरे और पीवे दारू। अब से पहले इतनी बुराई कर दी इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे, हमारे गुरुजी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अलह तकत है, ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पर, अरस कुरस पर अलह तकत है, और खलक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 180,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी मूसा जी जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तक है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अब्दाली।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने ले तुसी परमजीत पलाहा जी नो 403-544-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-23-23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लेने ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.

ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ।

चलो लिया मेरा मन तन पिना जन नानक मुस्क चको लिया सब जन में तन तना जन नानक मुस्क।

0: ना पायो बिन सतगुर करे ना पाया। सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले ऐसदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
1: गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चिर बिशुन राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया, हर नैन रस भिन्ने। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मिल हर मन मने। हाँ मूर्ख कारे लाइया, हाँ मूर्ख कारे लाइया। नानक हर कमे, नानक हर कमे।

तारे अमृत तारे। आसा महला चौथा। हरे अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राज गुर सत गुर सच्चा साहू है।

ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ ਪੜ ਭਰੀ ਐ ਸਾਤ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ ਪੜ ਗੱਡੀ ਐ ਖਾਤ ਪੜੀ ਐ।

0: अरे भगत भंडारा भगत भंडारा।
1: पहला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ वैष्णहार कूड़ सोना कूड़ पा कूड़ पहनहार

0: पियो बीज पत ले गए अब तो उगवे दाल जे कोई तो गुवे तीर धोए नान पाए बहरा पूरे रंग न सोए पैच खुंचड़ाइए शर्म पाहो तन होए नान पकी जेर पै पूरे कोई ना कोई महला पहला
1: पाप दो राजा मैं तकूड़ हो अस्कदार काम ने सत पुछिए बह बह करे विचार अंधे रहियत ज्ञान भी होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपरे सिंगार ऊचे कुकह वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड बह घर बार सब को पूरा पे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाई है ता नानक तोलिया जापे वदी सुवज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारियां करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौर धुर कर्म जिन्हा को तुद पाया तात ने खसम ते आया है नजर तक कृष्णाई तुद वे की जगत उपाया इकना न तुम मेल ले।

0: पार पया कहो नानक करती की बात जो कुछ करना कर रहा महला दूजा
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा वास देवा सजे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ कुंभे बद्दा जल रहे जल बिना कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा होवे गुण गाए साध नवारी है जे अकल खलना देवे हो ना पचारी है ऐसी कला न खेडी है जित दर गया हारी है पड़ा ते उमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारी है अगे मारी है अगे मारी है
2: बॉडी पड़िया होवे गुनहगार ते उमी साधना मारी है जेहा काले कालना ते वेहु ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दर गया हारी है पढ़िया अत उमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारी है मोह चले सो अगे मारी।

दर्शन की मान्यास आस करे जी, दर्शन की मान्यास।

ਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जे मत तर लोचन चित भगत कंबीरे जानी रुक मांगद कर तूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गात पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत।

भगत पाए भरपूर, हृदय उछरै करतारै, गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तारै, नानक कुल

चित चित अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर चिन तुझ पास साथ संगत हों तकों, तेरे हुक्म पे निशान तो करो साहब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो

0: प्रभ दातो दातार परयो जाचे के कसरना मिले दान संतरेन जय लग पाओ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो द्रस मन चाओ भगत ओ मन ठहरावे भले हो चराग अंध्यार में सब कल उदरे एक नाम धर्म प्रकट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सत युग जिन त्रूपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देहे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहणा थाप जोत जगतारी लहणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोह जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण।
2: जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थेर कियो अमरदास अमरत सतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमरत बैण मूर्त पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन इको नैण।
3: जाम गुरु होए वाल तन है क्या गारब दीजै जाम गुरु होए वाल।

राख ले हो पत मेरी, जम को त्रास पयो

अर्जुन राख ले हो पत मेरी, जम को त्रास पयो उर अंतर।

महापतित मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

नाहिन गुण नाहिन कस जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परियो शरणागत अपैदान प्रभ दीजै नाहिन गुण नाहिन कस जप तप कौन कर्म अब कीजै।

जा प्रभु की हां चेर ले।

0: नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है। हर भगत हर लीजे, भगत हर लीजे।
1: सलो पहला पहला गौ ब्राह्मण को कलाव को बितर न जाई, तोती टिकाता जब माली तान छाई, अंतर पूजा पड़े कि बस जम तुरका।

0: किनार पूज करावा पूज करावा।
1: स्लो पहला पहला जेकर सूतक मानिया।

एक नहीं आश की तुझे लगे जाए, नानका से कांडी है साधी रस माए।

0: अरदास चले अरदास
1: पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमत स्नूगली ओह वजह भे दुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तो अंदर पाए वजह पाए अगला मुह मुह पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
2: जिन अंतर गुर

ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਖਰਾ ਸਾਖੀ।

0: जुग जुग भगत पाया।
1: चलो
0: भला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाये एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन एक उपर रहन खड़े। दिना सवारी नानका जिनको नदर करे महला दूजा,
1: आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप, तिस विच जान

Arif Jat Sari Mahalla Nava Harju राख ले हो पत मेरी जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी हर जू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास पयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहा महापतित मुग्ध लोभी फुन करत पाप अवहारा मर भी को विसरत नाहन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठताया घट ही भीतर बस निरंजन को मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै

प्रभु दी नाहिन गुण नाहिन कश जपता।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

सच धर्म झूठ ना बोली। गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे क्योंकि गुरमत विच झूठ बोलन की मनाही है। जे असी झूठ बोलते हाँ तो दादा जी नू चंगे नहीं लगते। प्यारे हो फिर ते सतगुरां दी खुशी लैण लई सानू सच बोलना पवेगा। कोई भी धर्म झूठ बोलन की आग्या नहीं देता। झूठ एक ऐसा जाल है जिस विच एक बार मनुख फस जाए एक झूठ दे नाल किन्ने झूठ बार बार झूठ बोलता है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की कहंदे ने, कहंदे ने बड़ा बड़ा पाप है मनुख

कई वार झगड़े लड़ाइया हो जाते ने, फैसले करांदिया कई वार झूठ बोलना पैदा है। सतगुरु कहन लगे भाई चूड़, झूठ बोल के कराए फैसले फैसले नहीं हुंदे, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਏ, ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਝਗੜਾ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਏ ਨਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ, ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, आदत बन गई ये गल करदियां करदियां झूठ कह ही हो जाता है, तुसी कृपा करो मैं सच बोलिया करा। तुसा बड़ी कृपा कीती है, सारे सुख कोल ने, पिंड दा चौधरी भी हां महाराज, फिर भी तुहाडे बचन ना मन्ना। मेरे मन विच आई दाता जी नू मन दी गल दसी देवा, महाराज तुसी कृपा करो। ते सतगुरु दसदे ने, दिन भर विच जिन्ने भी झूठ बोले शाम नू लिख लिया कर, जिदण फिर महीने बाद संग्रांद नू तू आवे, जिन्ने भी झूठ महीने विच बोले ने ना, सारे संगत विच खलो के सुना दिया कर। गुरु दे सिख ने बचन पल्ले बन्ने, हुण सवेर तो शाम तक जिन्ने झूठ बोलदा है ना, शामी लिख लैंदा है। संग्रांद आई, सतगुरां दे दरबार पुज्जा, समाप्ति तो बाद उठ के खलो गया है। जिन्ने झूठ बोले ने ना महीने दे विच, इन्हें सारे सुना दिते ने, सुना ते दिते ने, पर मन नू शर्म बड़ी आई। मना लोग की कहणगे, ਇਹ ਏਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। बस एहो जी कृपा होई, झूठ बोलना छड़ दिता है। जिस फैसले ते भी जाके खलोंदा है, जेड़े फैसले कई कई दिन नहीं सन हुंदे, इहदे अद्धे बोल नाल हो जाते हैं। हां प्यारियो, जेड़ा सच बोलदा है निरंकार उहदी रसना ते वसदा है, क्यों ना फैसले हो। जिथे जाके खलोंदा है, लोकी एदी गल दा विश्वास करदे ने भी ये झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलना छड़ देता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बहुत प्यारे बोल ने, सच बरत संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान। अज असी वरत रखते हाँ भी, मैं प्रशादा कोई नहीं छकना, वरत रखिया है। सतगुरु कहते ने मुबारक है, पर मेरी गल मन, जे वरत रखना है तो यह रखिया कर भी अज मैं झूठ नहीं बोलना। पर बड़ा औखा है, प्रशादे बगैर असी रह सकते हाँ, झूठ बोलन बगैर असी कितने रह सकते हाँ। झूठ बोलन बगैर रहा नहीं जाता, इंज कह लईए असी ते ये वरत रख लिया ये सच बोलना ही कोई नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी फिर की कहंदे ने, कहंदे ने पिंजर पंखी बांधिया कोए, शेरी भर में मुक्त न होए। झूठ बोलन वाला मनुख में जिमें पिंजरे विच बंद कोई पंछी होवे। झूठ बोलिया है चार मित्रां दे विच सिर चुक के गल नहीं कर सकता, पता है कि ते सच्ची गल निकली ना आवे। झूठ बोल के

सेठ जी घर ने ते तोता बाहरों ही कह दिंदा है सेठ जी घर कोई नहीं, झूठ सिखाया हो। पर प्यारियो अज ते साइंस तरक्की कर गई है, अज तोतियां दी कित्थे लोड़ है, कैमरा लगा होया है, जिहदे कोलों फायदा है उन्हूं मिल लैंदा है, ते नहीं ते कह दिंदा है घर कोई नहीं दुकान ते ही है। ज्यों ज्यों साइंस तरक्की कर गई है ते सतसंगीओ असी झूठ बोलन विच भी तरक्की कर गई है। नाल दे कमरे विच बैठा मोबाइल फोन ते कह दिंदा है मैं ते बहुत दूर बैठा है, झूठ ने भी बड़ी तरक्की कर ली है। अज असी जिउंदे ही झूठ ते हाँ, ते ताइयों दुनिया विच कलेश लड़ाइयां झगड़े। तोता कह दिंदा है सेठ जी घर कोई नहीं। एक दिन गली दे विच्चों कोई फकीर लंघे आए, की आवाजा देंदा जांदा है, झूठ बंधन है सच आजादी है, झूठ बंधन है झूठ फाहे है सच आजादी है। ते जदों तोते ने सुनिया ना, उन्हूं खुली हवा दियां उडारियां याद आ गईयां। कदी इस डाली ते बहिंदा सी, कदी उस डाली ते बहिंदा सी, कदी कोई फल मर्जी दी खुराक खांदा सी। अज मैं पिंजरे च बंद हाँ ते सारा दिन झूठ बोलदा हाँ, क्यों ना झूठ बोलना छड दईए। किसी ने आ आवाजा दिता सेठ जी घर ने, ते तोता कहिंदा ए घरे ही बैठे ने, मैं क्यों झूठ बोला, घरे ही बैठे ने। एक दिन लंघिया, दो दिन लंघे, सेठ बड़ा तंग होया, तोता ते कमला हो गया, मेरे काम का कोई नहीं रहा, पिंजरे का दरवाजा खोलिया कहिंदा जा उड़ जा, तू मेरे काम का नहीं रहा। तोते ने हवा दे विच उडारी मारी ते की कहिंदा ए दुनिया वालियो, सच्ची झूठ बंधन है सच आजादी, ए सच ही बोलिया करो। तोता खुली हवा विच उडारियां मारदा ए ते सुनेहा दे गया है। प्यारियो ये जानवरां दियां उदाहरणां ये ते सतगुरां ने सानू समझाउण वास्ते ही दित्तियां ने। शायद तोता ते समझ गया, जानवर ते समझ गया, असी समझे ही कोई नहीं। सतगुरां दी गल मन लईए ते झूठ बोलना छड दईए। ये जिहड़ियां असी झूठ बोल बोल के मित्रां रिश्तेदारां नाल गंढां पाईयां ने ना, ये गंढां टुट जाणगियां। ये जिहड़ी असी कुटन दी जिंदगी जीउंदे हां ना, दिने झूठ बोल के ठग लैंदे हां, रात नूं नींदर ही नहीं पैंदी भी मैं गरीब नूं फलाने नूं ठग लिया झूठ बोल के। गुरु घर बैठा भी झूरदा रहिंदा है महाराज, माफ कर दई झूठ बोल के फलाने नूं ठग बैठा। ते प्यारियो गुरु दी गल मन लईए, झूठ बोलना छड ही दईए। बड़े प्यारे बचन ने, मन झूठे तन झूठ है, जेवा झूठी होए मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सच्चा होए। जदों तू मुंह चो झूठ बोलदा है ना, तेरा मन भी झूठा हो जांदा है, तेरा तन भी झूठा हो जांदा है, ते झूठे बंदे मेरे सतगुरु जी नूं चंगे नहीं लगते।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 3232nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी राही सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाईवें शलोक दा पाठ आप जी ने सरवण कीता। कल जो अमृत बचन असी विचारे सन उस विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने ए दो बचन कीते, अपनी रसना जुबान नाल परमेश्वर दे गुण गा, अपने कन्ना नाल मालक दी सिफत तो सलाह नु सुन। इन्हां दो कर्मा नाल ही सच एवे कि तू जमा दे घर नू नहीं जाएगा। बड़ा स्पष्ट के जबान दे नाल परमेश्वर की कीर्ति और कन्ना दे द्वारा उस दे नाम नू कीर्तन नू सुनना। एही बचन सतगुरु दा सोठ राग विच रे मन राम सुन कर प्रीत सरवण गोबिंद गुण सुन अर गाओ रसना गीत। अच सतगुरु की बख्शे साडे ते कर रहे ने। आओ साध संगत आप जितने भी हजूर दी इस विचार नाल रोजाना जुड़े हुए हो बख्शो आशीष गुरु तेग बहादुर महाराज आप अपनी कला अपनी बख्शिश वरताओ। सतगुरु अंदर दा टिका पै भावनी शरदा दी दात बख्श के आप ही इस अमृत बचन दी विचार करा लवो। प्यार अदब सहित साध संगत सारे उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस अमृत बचन दे अंदर उस गुरमुख महापुरख उस पवित्र आत्मा दा जिक्र कीता है कि जिसने अपने सवासां दे चलदियां जिंदगी तक पूरी मुकम्मल जीवन ममता तो अपने आप नू बचा लिया ते ओ आप ता इस भव सागर तो तरे ही तरे। ओना ने खोरना जीवा नू वी इस संसार विच डुबदिया होया किनारे ला दिता। अज जो अमृत शलोक है दे अखरी अर्थ जो प्राणी ममता तजै जो दा लफजी अर्थ असि सारे जानने जेड़ा ते प्राणी दा मतलब है प्राण वे जिस विच चल रहे ने जिन्नी देर तक ओदे सवास ने ओदे प्राण चल रहे ने शरीर विच। महाराज कहिंदे जेड़ा भी प्राणी ममता तजै ममता दा लफ्ज़ी अर्थ है ममतव ममतव तो भाव के अपनत मैं मेरी। जेड़ा प्राणी इस संसार विच रहिंदिया प्राणा दे चलदिया अपनत नू मैं मेरी नू त्याग दिंदा है तजे छड़ दिंदा है ते होर की करदा लोभ मोह अहंकार लालच नू त्याग दिंदा मोह नू त्याग दिंदा ते अहंकार नू भी अपने अंदरों ओ छड़ दिंदा।
महाराज करण जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार ते ए फिर करदा कि कहो नानक। एदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहब बख्शिश कर रहे ने, फुरमा रहे ने, आपन तरह ओ प्राणी आप ता तरदा ही तरदा है। आपन तरह दा अर्थ आप तरदा है। ते महाराज कहते ने और न लेत उधार, ओ आप ता तरदा ही तरदा है। औरन दा अर्थ होरा नु भी, होर जीवां दा भी उधार कर देंदा है। आप संसार दे बंधना तो मुक्त होके इन्हां वकारां तो बच जांदा है। ते जिहड़ा ओदी सोबत ओदी संगत करदा है सच एवे ओ अपनी इस बख्शीश राही ओना नेड़े आउण वालियां नु भव सागर तो तार देंदा है। इह है सतगुरु दे इस अमृत शलोक दे आखरी अर्थ। हुण इस दी विचार है क्योंकि पिछले कई दिनां तो कुछ शलोक ऐसे ने जिहड़े एक विचार दी वार वार आ रहे। अज मन से सतगुरां ने इस शलोक विच उस दा जिक्र कीता है कि जिन्हें अपने जिउंदे जी इस चीज नु त्याग दिता। हुण शब्द है जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। ते मैं आखरी अर्थ कीते ने ममता दा अर्थ है अपनत, मेरा मेरी। जिस प्राणी ने अपने जिउंदे जी इस बिरती दा त्याग कर दिता है भी ये चीज मेरी, जी साडी अंदर दी सुर दी पकड़े वे किसी भी वस्तु नु देख के ये मेरी, ते छड्डन नु बंदे दा चित नहीं करता। महाराज कहिंदे जिहड़ा इंसान विचरदा संसार विच है फर्ज अपने सारे अदा करदा है, पर सच एवे ओ अपनत नहीं दिखा रहा, मेरी मेरी नहीं करदा पिया। उंज सतगुरां ने बाणी विच कहा भी है कि जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। इथे अपनत मैं मेरी वाली। ते महाराज अगे शब्द कह रहे आ ते अगला काम की करे, जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। हुण ममतव नाल सतगुरां ने तीन शब्द जोड़े। मैं ममता दे अर्थ भी कीते, लालच भी ममता दा रूप है, मोह भी ममता दा रूप है। ते सतगुरु कहिंदे ने अहंकार खौमे जिस इगो कहिंदे आ, जिसने इन्हां नू त्याग दिता, लालच नू त्याग दिता, मोह नू त्याग दिता, अहंकार नू त्याग दिता, ओ आप तरेगा ते ओदी सोबत करन वाले भी भव सागर तो तरनगे। सतगुरां ने जदों ए अमृत बचन कहा ते मन च ख्याल आया कि की ओ संसारी तौर ते कर्म भूमि च कोई कर्म नहीं करेगा, जिन्हें त्याग ही दिता, अपना त्याग दिती, मैं मेरी त्याग दिती, लालच त्याग दिता, मोह त्याग दिता, ते ए तजै शब्द दा मतलब की ओ सब कुछ छड के एक पासे हो गया कि इस कर्म भूमि विच उहने कोई भी संसारी कर्म नहीं किया। पर दूजे पासे तां गुरमत इह गल कहिंदी है कि जिन्नी देर तक संसार विच रहना है तू कर्म जरूर कर, संघर्ष जरूर कर। ते गुरु साहिब ने तां अपनी अमृत रचना विच ए गुरु नानक साहिब ने बचन कि अकाल खाए कि चथों देह नानक रहा पछाणे छे, कि तू उद्यम कर, काल कमाई कर, अपनी किरत कर। पर इत्थे जिहड़े इस शब्द ने लोभ मोह ते अहंकार ते ममता, क्योंकि ए भी संसार दे जिहड़ी कर्म ने उहनां नूं अगे चलाण विच ए बिरतियां काम भी करदियां। पर जदों परमेश्वर दे नाम नाल कोई जुड़ जाए ओह सारा कुछ चेंज हो जांदा है, रहिंदा संसार विच ही है। मैं कल भी परसों भी बेनती खोमे वाला जिस दिन सब्जेक्ट सी उस दिन कीती सी, ओह जिहड़ा लालच कर रहा है, लालच दा अर्थ ना भख ना अपख, यह भी अगे शब्द आना है, उस दिन आप इहदी खुल के विचार करांगे। भख अपख चंगा मंदा नहीं जानना, सिर्फ अंदर दी भुख अग बली जानी ये केवल मेरे कोल होवे। महाराज कहिंदे उहने लालच दी बिरती नूं त्याग दिता, चंगे मंदे दी पहचान कर ली, पर ओ लालच नूं संतोख दा रूप दे गया। ओ करदा जरूर है कार, पर सच ए वे सबर दे नाल ओ जिंदा है। जिन्ना बंदा लालच विच विचरदा है, फिर इस बेनती नूं सुनियो, क्योंकि भी तां एक एनर्जी है जिहड़ी बंदे नूं अगे लैके जांदी। पर जदों उस लालच नूं सबर विच वरत के, सबर दा अर्थ आलसी नहीं, सबर दा अर्थ वेलर नहीं, सबर दा अर्थ है कि ओ कर्मशील है,
ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦਾ। ਛੱਪੜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਇਹੋ ਸਵਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ। ਬਸ ਆ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਟੁਕਣਗੇ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੌਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਬਰ ਇਹੋ ਸਵਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ ਟੁੱਟਣਾ ਥੀਵੈ ਵਾਹੜਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ, ਇੱਕ ਵਾੜਾ, ਇੱਕ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਚ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕਹਿ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਸਕੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਲੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी या होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue NE कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानूं जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नूं बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारिआं दी हाजरी दरगाही परवान होवे। समूह संगतां दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकर दीन दुनी दे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा जो त्रुट के बख्शिशां करदे ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे सारिआं उत्ते नदर कृपा करन। आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल जुड़ के अपना जीवन जन्म सफल करिए। इन्नीआं बेनतीआं प्रवान करिओ, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी। सारी संगत दा धन्नवाद। रखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary,

0: प्रोग्राम का भी हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: कभू के सुने पुकार। आ कई गुरमुख प्यारे मैं पूछते नहीं भी ज्ञानी जी जेड़ा आप नितनेम कर देता की मतलब होया। मैं उन्होंने वीर भैणों बेनती करदा भाई जेड़ा आप नितनेम करते ये आप रब नवाजा मारते हैं तो जे आवाजा मारी चलांगे तो कदे ना कदे साड़ी आवाज सोनी लेगा ना तो जे मारी नहीं तो अंगारा कौन भरेगा। इस प्रकार एक अद्वैत रूपी ब्रह्म जिहड़ा उहदा नां लैगा ना उहदी रख्या करदा है। सतगुर प्रसाद तों भाव गुरमुखा जिन्ना चिर सच्चा गुरु कृपा ना करे बात नहीं बननी। प्रसाद नाम है कृपा दा। गुरमुखो बात मेहनत नाल नहीं बननी, बात रहमत नाल बननी है। बड़ी मेहनत करदे हैं जिन्ना चिर रब की मेहनत रहमत ना आई उन्ना चिर बरकत नहीं जे पैंदी। बड़ी आपां मेहनत करदे सारे जने जिन्ना भी को है पर जदों उहदी कृपा हो जाए ना उदों कीड़ा थाप दे पातशाही जिहड़ा कीड़े वर्गा ना उहनूं पातशाह बना देंदा है।
1: हम सार दीन दयाल न तुम सार।
0: बाबा रवदास जी अरदास करन दा ढंग दसदे ने भाई हे परिपूर्ण परमात्मा मेरे वर्गा नमाणा गरीब कोई नहीं। आपां कई वार गुरमुख अर्थां विच उलझ जांदे आ। एक शब्द विद्वाना ने कई की अर्थ किए हैं। संत बाबा कृपाल सिंह जिहड़े सत्तू वाली गली वाले होए ने ना उन्होंने एक एक शब्द के 48-48 अर्थ किए हैं। मैं रहाओ के 52 अर्थ पढ़े ने। मेरे कहन तो भाव आपां जिन्ना मर्जी भी ज्ञान वरती चलीए तो गुरमुखो परमात्मा की विड़ियाई मुकदी नहीं। जिहड़ा दीन शब्द है दो तरह के मत ने एक इर्मनी और एक भारती। ईसाई मुसलमान और यहूदी इन्हां दे मत नूं इर्मनी कहा जाता ते अपने मतां नूं भारती कहा जाता है। इर्मनी मतां दे मुताबक दीन दा अर्थ हुंदा है धर्म लेकिन भारती मतां दे मुताबक है गरीब नमाणा। बाबा अरदास जी कहिंदे हे वाहिगुरू मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं, मेरे वर्गा नमाणा कोई नहीं।
1: दयाल ना तुम सार।
0: तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। आपां पापी हां आपां पुन्नी हां लेकिन गुरमुखो उह सानू रोटी देंदा है। आपां पाठ करदे हां सैल पत्थर मैं जन तो पाए ता का रिजक आगे कर धरिया। ये पंक्ति गुरबाणी च है ते सानू टकसाल दस्या भी एक बेरा वापरी। दमदमी टकसाल दे 11वें मुखी बाबा सुंदर सिंह जी नूं आपां भिंडरां वाले बाबे कहिंदे आ जिथों इह भिंडरां वाले नां टकसाल दे मुखियां दा पिया है। ओह गुरदासपुर दे इलाके वल प्रचार करन गए। जिहड़ा धारीवाल दा पुल है ना शहर दे विच आपां उस नहर लंघदी है उहदा कम चल रहा सी संत बाबा सुंदर सिंह दे समय ते कुदरती तौर ते उत्थे जिहड़ा पत्थर सी उह टुटा ते विद्यार्थियों नूं कहण लगे काका मैं तुहानूं विखावां। आपां कथा च पढ़िया शक्कर खोर कीड़ा ओह कीड़ा जिहड़ा शक्कर खांदा है। आ वेखो चिट्टे रंग दा ओह कीड़ा सी ते कहिंदे ते मूंह विच वेखो जदों वेख्या ते पीले रंग दा ते कहण लगे मूंह च पा के वेखो कहण लगी ते मिठी शक्कर वर्गी है। कहण लगे गुरमुखो वेखो हुण रब ने कितें बड़े बेलना लाया भी इह ते शक्कर करे पर परमात्मा ने इहदी पालना करन वास्ते पत्थर दे विच कीड़े दे अगे मूंह दे विच शक्कर दित्ती है। इत्थों लफ्ज़ बणिया जी शक्कर खोर कीड़ा। हे मेरे वाहिगुरू मेरे वर्गा नमाणा कोई नहीं, तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। आप पतियार क्या कीजे ते मेरी बेनती है मेरा पतरावा ना नहीं। आपां तो गुरमुखो रोज रब दा लैने परख कि मेरा काका बाहर चला जाए ते तां मनांगा नहीं ते तू अपने घर ते मैं अपने घर ये पतरावा नहीं। एक शायद 20 साल पुरानी गल होवे मैनू एक आदमी गड्डी ते लैके गया कि उत्थे प्रोग्राम सी ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦਾ

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਡਿਜਾਰਡਿਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਟੋ, ਹੋਮ, ਮੋਟਰਬਾਈਕ, ਬੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਨੂੰ 403-554-4444
0: ਯਾਨੀ 403-554-4444 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 210 23 32nd ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਵਾਲ, ਰੂਫਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਮੈਟਲ, ਮਿਟਨ ਸਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੂੰ 403-690-8700 ਯਾਨੀ 403-690-8700 ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੂੰ 403-561-0227 ਯਾਨੀ 403-561-0227 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4612 6th ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111 ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144-3670 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
2: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते जो भी विचार पेश किए जाते ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 ਐਫਐਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
3: ਗੀਤਾ ਆ 18 ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 62 ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸਵਯਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: परमात्मा ने जो आदेश देना था पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो जो कहना था, सुनना था, आदेश देना था, विधान बताना था, वो बताकर चले गए। उसके बाद अब ये कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़िएगा, लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला है। और ये आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। बाबा आदम जो है और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में। और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि कुछ किसी ने मांस नहीं खाना, ये आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किशमिश, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, और फिर अड़ंगा खावे। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखे अभी पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो, जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूं, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। हाँ बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम्यता शराब भी पिलावे और फिर भी उदमस्ता रहे वो, क्योंकि सतभक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टलै नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है। तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है कहीं लिखा है तो वो परमात्मा का आदेश आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है, और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीब दास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब कबीर साहब की महिमा को गरीब दास जी सुना रहे हैं और बता रहे कबीर साहब की और उन काजियों की वार्ता। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि एक काजी तेने किसके आदेश से गाय मार दी, कत्ल कर दिया इसका। और फिर बताते हैं ये गऊ क्या है, गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीब दास काजी कुटिल तन कत्ल किया औजूदे। अब जिसका हम दूध पीते हैं उसको मां की दृष्टि से देखते हैं। पहले गायें ही होती थी अपने भारतवर्ष में, भैंस नहीं थी। अब गौ भी माता है और भैंस का दूध पीवांगे तो भैंस भी माता है, और बकरी का दूध पीवांगे तो बकरी भी माता है, यानी आदरणीय है वो, फिर उनका मांस खावे। तो क्या कहते हैं, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीब दास का जी ही कुटिल तन कतल किया औजूदे। गौ आपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीब दास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। परमेश्वर कबीर जी कितनी हमारे हित की बात कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी व्यक्ति परमात्मा के शत्रु बनते चले गए। कि गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी नबा। और कबीर साहब कहते हैं कि गरीब दास इस घी दूध को सब ही आत्म खा, यानी गऊ ना तो हिंदू को बना करती दूध पीनते ना मुसलमान को, और कहते फिर इसका मांस खाते हो। अब एक गाय लगभग 6-7 बार बच्चा देती है और लगभग 10 वर्ष तक या 8-7 वर्ष तक वो दूध पिलाती है आपको, आप उसका दूध पियो और मांस तो एक बार खा के तुमने फारिग कर दिया और पाप के बागी बन गए। आपका भी पेट भर, आपके बच्चों का भी पेट भर है, और बिना ज्ञान के तुम पाप के भागी होते हो, गऊ का मांस खाते हो काजियो, ये तुम्हारा प्रोसीजर अच्छा नहीं है। तुम गलत कर रहे हो, भगवान के दोषी बन और बना रहे हो। अब क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़ी, गरीब दास दर गए सर तेरे गढ़ में पड़े जंजीरी, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीब दास जो ला कही ये बानी अकल अधीठ। अब जैसे ज्ञान चर्चा होती थी, परमात्मा उनको ये नसीहत दिया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे, तुम ऐसा मत करो, तुम पाप के भागी हो रहे हो। कहते हैं वह काजी और मुल्ला उनके साथ इतना, क्योंकि वहां बैठे उपस्थित लोग तो इस बात से सहमत होते थे कि कबीर जी ठीक कह रहे हैं, और उनकी मिट्टी पलीत हो थी, तो कहते वहीं पर कुरान शरीफ भी छोड़ गए और चले गए। कहने लगे हम राजा को शिकायत करेंगे, इसकी नकम्मा आदमी है। और क्या बोले, जुल्हा दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीब दास मुल्ला मुरुग अपनी अपनी भेर। अब काजी मुल्ला उठ कर चले गए, गोष्ठी हो रही थी, सैकड़ों की संख्या भगत मुसलमान और हिंदू उपस्थित थे, तो काजी मुल्ला उठ कर चले गए, उनको फेर लाए पकड़ के कि जाओ ना बैठो, चर्चा तो करो, फिर बैठ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, मुर्गे से मुल्ला बनो तुम मुल्ला फिर मुर्ग, गरीब दास दो जग दस हो गए तुमने पावे नहीं सुरग। अब क्या बताते थे कि परमात्मा का विधान है, आज मुर्गे को तुम काट रहे हो, बकरी गाय को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू तो मुर्गा होगा, मुर्गा और मुर्गा बनेगा काजी, ये तेरी गर्दन काटेगा, ये तुम्हारा टिट फॉर टेट सदा बना रहेगा, तो ऐसा जुर्म ना करके तेरे को आगे फिर ये मुर्गा बनकर शीश देना पड़ेगा इसको। फिर क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त हो और बाँचो फिर कुराने, गरीब दास इस जुल्म से तेरे डूबे दोहू दी जिहाने, कि एक तरफ तो तुम कलमा पढ़ते हो, जैसे मंत्र होता है ना अपना मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, और गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उस मंत्र को पढ़ा करते थे, तो वो तो कहते तुम पवित्र वाणी कलमा तो पढ़ रहे हो भगवान की महिमा का, और उधर से गाय काट रहे हो, अरे तेरा गजर वो ये के बात हुई, इधर से तुम भक्ति कर रहे हो और वो जुल्म कर रहे साथ की साथ। काजी कलमा पढ़त हो तुम और बच्चो फिर कुराने, इसे पवित्र ग्रंथ को भी पढ़ते हो और फिर तुम गाय बकरे मुर्गे काटते हो, गरीब दास इस जुल्म से थरे डूबे दो जिहान, यानी दोनों स्थान बिगड़ जाएंगे, ना तुम यहाँ के रहोगे ना तुम स्वर्ग जा सकते, यहां भी तुम इब्रान माटी यानी पाप के भागी होगे। अब परमात्मा दोनों धर्मों को कहा करते थे, यानी काजी और मुल्ला और पंडितों को, दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीब दास गऊ सूर में एक बोलन हारे। ओए ओए। अब देख कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं कबीर परमेश्वर के, दोनों धर्म दया करो और मानो वचन हमार। और कबीर साहब कहते हैं, और सूर और गऊ में एक सा ही जीव है। फिर क्या बताते हैं, सूर गऊ में एक है गाय भखो न सूरे, गरीब दास सूर गऊ का दोहू का एक है नूरे, मुल्ला से पंडित भय पंडित से भय मुल्ले, गरीब दास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। अब क्या बताते हैं कि हिंदू हिंदू वाले पंडित तनों के मुल्ला काजी और ये मुसलमान काफिर हैं, और मुसलमानों के काजी और मुसलमान कहते हिंदू काफिर हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, देखो आज तुम पंडित हो हिंदू धर्म में, और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मुसलमान धर्म में जन्म ले सकते हो और फिर आप काजी भी बन सकते हो, और काजी आज मुसलमान धर्म में है तो कल वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर वो पंडित भी बन सकता है। तुम आपस में ये झगड़े झगड़े छोड़ के सुल्लम सुल अपना कंप्रोमाइज कर लो। मुल्ला से पंडित भवे और पंडित से भव मुल्ल, गरीब दास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करे हलाले, गरीब दास दो दीन का थरा होगा हाल बेहाल। अब देखो कितनी अपनी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। हिंदू के पंडित भी भेंट चढ़वाते हैं माताओं को, बदनाम करते हैं कि काली तो झोटे मांगे, काली माई और फलानी माई बकरे खाती है, वो माई फिर मुर्गा खाती है, खावा बेटी के बाप ये जीभ के चठोरे। तो कहते हैं कि ये क्या बताते हैं कि चतुर गुरु हिंदुओं के, कि हम तो पशु को जैसे बलि चढ़ाते हैं एकदम झटके से मार देते हैं, उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको महसूस नहीं होता दर्द, तब बलि चढ़ाते हैं, हम पाप नहीं करते। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे हलाल करते हैं, कहीं उसको पीड़ा ना हो जाए। मूर्ख बना रहे, ले तेरी गर्दन काटे कुकरे कटवा लो, हिंदू कटवाओ ऐसे, और मुसलमान नहीं काटेंगे ऐसे, धीरे धीरे कलदा पाट जाएगा तुम्हारा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पुण्य आत्माओं जैसे वाजी जी जैसे महापुरुष ने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए, और शेख फरीद जैसे मुसलमान महापुरुष ने अपना तनमन वार दिया परमात्मा पाने के लिए, कुएं में लटक गए वापस ऊपर पैर बांध के वृक्ष के, और 12 वर्ष तक साधना करते रहे, सूख गया पिंजर भी, शरीर पर मांस नहीं रहा, अस्थि पिंजर नजर आने लगा, जब कौवे आ गए उसकी आंख खाने के लिए और शरीर पर कोई खाने की वस्तु नजर नहीं आई उन्होंने, और सोच लिया कि व्यक्ति मर गया है। तब शेख फरीद ने कहा था कि हे भाई कव्यो, वो मुसलमान था, मुसलमान मांस छू है नहीं, मुसलमान वो है जो मांस को हाथ भी नहीं लगावे। शेख फरीद ने कहा था कव्यो, मेरी आंखें मत खाना, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मेरे शरीर पर कहीं पर भी तुम्हें मांस शेष दिखाई देता वो मांस खा लो मेरा, पर मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और अपनी अपने कुर्बानी कर दी कि मेरा तो तुम सब कुछ खा लो पर मुझे मालिक मिल जाए, मेरी वो व्यवस्था ना खराब करना। और जो प्रोसीजर तुमने अपना रखा है हलाल करके कलमा पढ़कर और ऊपर मस्जिद में जाकर आवाज लगाता है मुल्ला या काजी के, हे अल्लाह ये रूह बकरे की आत्मा को विश्व में स्थान दीजिए। अब परमात्मा कहा करते कबीर जी, जय या रू ते भिस्त पठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। कबीर परमात्मा उन काजी और मुल्ला को कहा करते थे, यदि तू अपने इस प्रोसीजर को, इस वे ऑफ वर्शिप को स्वर्ग जाने की मानता है, तुझे कॉन्फिडेंस है, तो अपने परिवार को भेज, उसको कर हलाल सबको, और आदेश दे भगवान को कि इसको स्वर्ग में रखना, मेरे परिवार आ रहा है। यदि कोई मंत्री बन जा और उसको कहीं प्लाट अलॉट करने का आदेश आ जाए ना, वो बकरियां का नंबर ना दे, अपने बड़का का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी पत्नी का, बहन का, भाई का, सबसे पहले उनका फार्म भरेगा, बकरियां का कौन नंबर आने दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुमको ये पर पूरा विश्वास है कि ये बकरियां इस प्रकार बकरे के हलाल करने मात्र से और ये कलमा पढ़ देने से ये स्वर्ग चला जाता है, तो बकरियां का नंबर कोई नहीं आन दे। तो परमात्मा की इन खरी खरी बातों से, सच्चाई से वो सारे चंगर गए, क्योंकि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने और मान बड़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करे हलाले, गरीब दास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। वहां देखियो थारा के बक्कल उतरेगा। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधारा सूरे, गरीब दास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। भगवान तो निकट भी ना हो थारे इसे नाला कहाँ गए। रब की रू मारते और खाते मोरे मोरे, गरीब दास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशे, गरीब दास इसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोसे। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन राते, गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। एक तरफ से कहता है मैं हक यानी सही कर रहा हूं और मारे इन अनाथ जीवों को तुम मार रहा है, और कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ सुआद रे जिंद, गरीब दास दरगाह में तेरे गड़ में पड़ेगा फंद। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ। बासमती चावल पके, बासमती चावल पका और गरत खांड टुकड़ा रे, गरीब दास करो।

है तो गरीबदास काजी सुन, ये मिट्टी मांस ना पका। रोजे रखें और खून करें फिर तस्वीले हाथ, गरीबदास दरगह सरेतन बहुत करी है घात। कबीर साहब कहा करते, दिन में तो तुम रोजे रखो, व्रत रखते हो भगवान के लिए, और सामने वो कर्म बिगाड़ दिया, मुर्गा मार दिया, बकरा काट दिया, है तेरा गजब। काजी खिलस उठाए दे तज रोजे की रीत, गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जावेगा बीत। काजी राजी क्यों हुआ जो हती अलह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं ये लेखा दूबर दू। अब इस प्रकार के विचार परमात्मा उनके हित में ही दिया करते थे काजी मुल्ला और पंडितों को, लेकिन परमात्मा की वाणी है कि कहें साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, कि उनके भले की कहें, कहें भली वो माने बुरी यही परीक्षा नीच। अब परमात्मा के तो हिंदू भी उसी के बच्चे हैं और मुसलमान भी उसी की आत्मा है। अब वो तो उनको पता है परमेश्वर को कि ये काल के द्वारा प्रेरित हैं और काल चाहता है इनके इतने कर्म बिगड़वा दूं, इनको फिर नरक में ठोक दूं, गणे जनते इनकी आंखें ना खुले, या फिर गधे कुत्ते बनाकर छोड़ दूं, कहीं इनको परमात्मा का पता ना लग जा, सच्चाई का ज्ञान ना हो जा। अब काल प्रेरणा से काजी और मुल्ला चिंगर गए, बिगड़ गए और बहुत बड़ा बुरा माना, भगवान के साथ बहुत बदतमीजियां की। अंत में क्या हुआ, एक बार सिकंदर लोधी चला गया काशी में, क्योंकि वो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल था, बघेला। वीर सिंह बघेला कबीर परमेश्वर जी की शक्ति और ज्ञान से परिचित होकर के, उनकी महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य हो गया था। अब वो पंडित और काजी इसलिए वो शांत थे, वहां चुप बैठे रहते थे, कबीर जी के साथ तो खसते रहते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे शिकायत करने कि वो तो इनका शिष्य है। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसके अंतर्गत सभी छोटे नरेश आते थे, वो पहुंच गया काशी में और लग गया दाव इन नकलियों का। अब वो काजी और मुल्ला हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए राजा सिकंदर लोधी के पास। सिकंदर लोधी ने कारण पूछा कि आज कैसे इतने समूह इकट्ठा होकर आया है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि एक हिंदू कबीर नाम का है और उसने हमारे मुसलमान धर्म की बेइज्जती कर दी। वो कहता है कि मांस मिट्टी मत खाओ और हमारे मुसलमान धर्म की क्रियाओं को गलत बताता है और अपने आप को भगवान बताता है, नमक मेरे चोर लगा दी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। न्यू आदेश पाते ही एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही पहुंचे, लाए पकड़ कर परमात्मा ने। अपुणात्माओं, वहां हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दर्शक बैठे, राजा बैठा। राजा ने कहा कि तू कौन है, तू अपने आप को भगवान बताता है, यदि तू अल्लाह का रसूल है तो तेरी परीक्षा लेते हैं। एक गऊ मंगाती, क्योंकि परमात्मा कह रहे थे गऊ मत मारो पाप होगा, तो ये तो उल्टे पड़े फिर बूंड की तरह। तो गऊआ मंगाई और कहा कि इसको हम कत्ल करते हैं तेरे सामने और तू जीवित कर देना कबीर, अगर तू अल्लाह है या उसका रसूल है। हमारे अल्लाह हजरत मोहम्मद ने गाय को मार कर जीवित कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी ने गाय को कैसे मारा था, उसने वतन से मारा था, शब्द से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवित कर दिया था, उसका मांस भी खाया था। और तुम करो रीस नकल, परमात्मा ने उनको बताया। फिर भी उन्होंने कहा कि ये गाय काट दी हमने, पेट में बच्चा था, मां बेटों का 4 टुकड़े हो गए। सिकंदर लोधी ने कहा कि अब बोल, तू क्यों बैठा है चुप,
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣਗੇ।

0: परमात्मा खड़े हुए और कहा, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं हूं अल्लाह अकबर और हम ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। दोनों माँ बेटियां गए, एक थपकी उसका मारी एक बच्चे का, दोनों के शरीर जुड़कर जीवित हो गए और गाय के नीचे बच्चा लाकर दूध की बाल्टी भर दी कबीर परमात्मा ने। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। पुनात्मा ये परमात्मा है, मूर्ख मन वाकाल की चिंता क्यों सताती है, सतगुर अपना साथी है। बोलो सतगुरु देव की जय हो।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइटिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
3: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
4: 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
0: परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहाँ आश्रम में पहुंच पाए। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है, जैसे कैद होती है, जेल होती है। तो यहां प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है और यहां परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहां का जो भगवान है, यहां का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहां जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से आप जी कहीं किसी काम बस जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, शर्म लगो, आंख फूटो चे टांग टूटो, भागकर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं। अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितने कितने संख्या में मरते हैं बिलों में, अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी, मनुष्य, मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है, ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति, एक सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहां गिरे जाके। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहां गर्भियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है, एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री प्रधानमंत्री बनकर तू कहां रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहां आ जाएगा, घर भी आ सकता है और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहां जन्मे कहां पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के हे कहां खंडेंगे आड़े। पुण्यात्मा परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा, या लूट खसोट रिश्वत खोरी हाहाकार मची है, इस माया ने सबको अंधा बना दिया है, ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की जमीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है, इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है, माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको, और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपके सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे, और आप ये सोच भी नहीं सकोगे हे भगवान, उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं और दो पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहां जाते थे। गुणात्माओं, जब इंसान के पाप क्रम बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के कि जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की जो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तोड़ भी हो सके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें? तो कहने का भाव यह है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10 20 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्मा ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपए का मेडिकल का खर्चा होता था डॉक्टरों का, और फिर वो बीडी बंडल वाले तक कहना है कि शराब वाला और बीड़ी का हिसाब लावे तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपए की जो ना पी जाता है, तो महीने का हिसाब लावे तो 2-2.5 हजार रुपए ये खराब होती थी, ये बच जाती। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेटर नहीं लाया जा सकता, वो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपलसरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी। और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है, हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगन मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर। और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच का विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है, जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जाकर के नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु ऋषि और मंडलेश्वरों ने, पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को, क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे, उनको मोतियाबिंद हो चुका था। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान महामहर्षि मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण पंडित कहलाते थे, इनको अपने सदग्रंथों का कह खे का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ नकली, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने मिसगाइड कर दिया और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत परम धनी माना करते थे। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन चम आंख तो नो दिखे, पर मोती इनके फिर मोती आविंदरे, ये विद्वान नजर आओ थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अपनी मजदूरी करके कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे, लेकिन आत्मा में भगवान की चाह सदा से ही रही है जीव के। उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु, इन्होंने ऐसा बठा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए, गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है, और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, या तो माता भगत जन, या दाता या सूर, और ना तैरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं, या तो माता भगत पैदा करे, या दानवीर हो दानी दाता, और या सूरवीर हो, अन्यथा कहते हैं इस तरह, और ये निर अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं और सारा दिन दुनिया ने लूटे बूंदी अच्छी बदलावे और भी किसी के नाक में दम रखे। कहते इनसे अच्छा तो बांध रह ले, क्यों अपने नूर का भी को भी नष्ट करे ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन दिए, और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो, और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का, और दसके तीनों लोक यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं, सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता, उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रह्लाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था, हिरण्यकश्यपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहां, जैसे सूरवीर थे ईसा मसीह जी, क्रस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने, उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो, जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग आने से प्राणी को ज्ञान होता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यहां रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्यों बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना, उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका विवाह कर दूं और फिर वैसे मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट जाए। अब पुण्यात्मा ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा अब यहां कई प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है। परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहां दो स्थिति हैं, एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल के व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे, उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला, उसने जो करना हो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर, प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावे। अपने आत्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, और कौन कितने क्या बनते हैं इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हुए हैं भाई वहां कोठी काट दी बड़ी आकार ले ली। यानी जितना वो लुटे खसोटे दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी ये तत्व ज्ञान के इस चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केवरान मट्टी होगी। पुण्यात्माओं जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, या भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों का अभाव हो गया है, ये अब अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी, अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा हमने कुछ दान नहीं देना और लड़के का विवाह होगा हमने एक रुपया भी नहीं लेना, क्योंकि हम इस न्यू नहीं कोई एक वैसे फॉर्मलिटी है, या ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है, हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं। जैसे कोई आज किसी से धोखा धड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए 10 लाख रुपए 2 लाख रुपए कोई ले लेता है उसके हड़प जाता है तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बन के लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते इन बड़े बड़े पैसे वालों को लड़की का विवाह होता था दामाद को कार न्यारी देते थे 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे, क्यों वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका, अब वो दामाद बनकर ले गया लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपए भी अपने पूरे कर लिए और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आओगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000 कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा, और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया, उसमें 3-4 लाख रुपए बेटी के ब्याह पर लगाए, ये सन 1988 की बात है, 89 की, उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज़ अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हों तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ East Calgary।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
1: ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 4039-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हों तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

भले हारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहे।

तेरांतना परावरेया। रागासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई। तुदापे सृष्ट सब उपाई जी तुदापे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।
तित सर्वरडै भईले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जापता

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाथ दर मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी के की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम निरंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेवना पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो संकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करोरण काता
जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै हैं ताकि काल निकट न है। रक्षा होए तहे सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जंतु मैं संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा।

सिमरत शास्त्र वीर स्वै बहु भेद कहें हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखानियो। दोहरा सागल

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घरता तेरै सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सा पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे।

अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सब आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। एह वस्त जी नह जाई, नित नित रख और धारो।

अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पात

राम कहत बंधन तह छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनौ।

निमुख बाहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतर पार। अजामल पापी जग जाने,

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी च 24 घंटे सत्तों दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल